लोटांगन खुद पूरे घाल तो बैठ का शेकड़ा कर तो हे नाक आता रगड़ तो तुझ नवाज का जप आता।

0: पर जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमसा।
1: मी इशिता बोरा आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।

थमला मामा ही थमला पूरी थमला मामा ही थमला प्रेम मनो दे हाथ कुछ मछी मैना धर्म को कहना या इश्क का दो।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।